0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती

0: की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. He will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on Narcotics Control 2026-2029, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. National Testing Agency, NTA, has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।

7:07 है, स्टूडियो की घड़ी का समय 100.1 FM गोल्ड पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा को और लेकर आ चुकी है आपकी ये रेडियो दोस्त, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह। जी हाँ, सुबह तो वाकई में सुहानी है और मौसम आज का जो है वो सुबह सुबह वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आपकी रेडियो दोस्त आशा करती है कि जी हाँ, बरसात के भीगे भीगे मौसम को आप भरपूर तरीके से आनंद उठा रहे होंगे। तो चलिए, मौसम का आनंद आप उठाते रहिए। और वैसे भी सुबह का समय है तो थोड़ा सा आलस और थोड़ी सी हड़बड़ी मचा जो समय होता है, खैर सुबह का जो समय होता है वो तो कुछ ऐसा ही होता है ना। और ऐसे ही समय को साथ लेकर चलते रहिए और साथ रखिए इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड, के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
4: सात बजकर 13 मिनट सुबह सुबह के कार्यक्रम सुहाने सुबह को सुन रहे हैं आप, आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा के साथ। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है चैनल 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल आपको आज के मौसम आखिर कैसा रहेगा, मौसम का मिजाज, इसके बारे में आपको थोड़ा बताएं।

अलीपुर मौसम विभाग की ओर से वैसे तो कहा जा रहा है कि आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे, कभी कभार बिजली चमकने के साथ बरसात होने की भी संभावना दी जा रही है। अब आपको बताते हैं अगले 24 घंटों के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान आखिर कितना रह सकता है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बताई जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 24.1 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य से 2.7 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम आर्द्रता की बात करें तो 100% आर्द्रता को रिकॉर्ड किया गया था और न्यूनतम आर्द्रता 71% रिकॉर्ड की गई थी। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश बिल्कुल नहीं हुई और अच्छी बात यह है कि मछुआरे भाइयों के लिए आज के लिए या फिर आने वाले समय के लिए अब तक कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। तो ये तो थी मौसम विभाग की ओर से मौसम के मिजाज का हाल चाल पहुंचाया आप सभी श्रोताओं तक। वैसे तो बरसात का मौसम है यानी कि भीगा भीगा मौसम यानी कि हमें ना बिल्कुल भी तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, हमारे हथियारों के साथ, हमें हमारे शस्त्रों के साथ, और भला हमारे हथियार और अस्त्र और शस्त्र भला क्या हो सकते हैं जो कि हमें बरसात से बचा सकते हैं। बस वही वाली चीज़ जिसे हम हमेशा अपने पास रखना पसंद करते हैं। जी हाँ, वैसे कभी कभार ना ये जो चीज़ है काफ़ी बोरियत ला देती है कि भाई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्यों खामखा बोझा जो है वो ढोने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभार यही बोझा आपका किस तरीके से मदद कर दे, जी हाँ, कब किस वक्त कैसे काम आ जाए ये आपको भी नहीं पता होता। और वैसे भी बरसात का मौसम है और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त बरसात जो है वो आप पर गिर सकती है, और ऐसे में अगर आपने अपने साथी का साथ छोड़ दिया तो आप समझ ही सकते हैं कि आपका हाल आखिर क्या होने वाला है। जी हाँ, बात कर रही हूँ उसे रंगीन छाते के बारे में जिसका साथ कम से कम इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस चीज़ का भरोसा हो ही नहीं वाला उसके बारे में आप इतनी श्योर होकर इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि फिलहाल इस मौसम के लिए जो बरसात है ये आप पर कभी बरस नहीं सकती है ना। इसका भरोसा तो खैर किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल सुहाने सुंदर मौसम का जो आनंद है उसे हम उठा सकते हैं, और मौसम का आनंद आप उठाते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक खूबसूरत गाने का साथ अगर मिल जाए तो कैसा हो, है ना। जी हाँ, समय जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत कटने लगता है। तो फिलहाल आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि आपकी सुबह को बना सकता है और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा सुहाना।

ओपी नैयर के संगीत से सजा ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में, फिल्म कश्मीर की गली। गीत के बोल थे SH बिहारी के। फिलहाल 7:30 है चुड़ी की घड़ी का समय और कार्यक्रम चल रहा है सुहानी सुबह। तो चलिए कार्यक्रम को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सुहानी सुबह इस कार्यक्रम में थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को उलटते हैं। और इतिहास के पन्नों को जब हम उलटते हैं तो आज के दिन के इतिहास के महत्व को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में हमें ये दिखता है कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में आज का

यानी कि 26 जून के दिन का एक खास महत्व है। संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक महत्व, युद्ध को टालने में उसकी भूमिका, कमजोर देशों को दी जाने वाली सहायता और शांति स्थापना में उसके योगदान से सभी वाकिफ हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आया था, लेकिन इसके घोषणा पत्र को उसी साल आज के दिन यानी कि 26 जून को स्वीकार कर लिया गया था और इस पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने अपने हस्ताक्षर भी दिए थे।

दूरियां नज़दीकियां बन गई, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है इस गीत में, जिसमें आवाज़ है किशोर कुमार और आशा भोंसले की। वाकई में दूरियां जब नज़दीकियां बन जाती हैं और वो अगर अनजाने में हो तो उसे इत्तेफाक ही तो कहा जाता है ना। और ऐसे इत्तेफाक हमारे जीवन में कितने ही होते रहते हैं, लेकिन हर बार हर घटना को क्या इत्तेफाक कहना सही होता है? नहीं ना। लेकिन फिर भी हम इत्तेफाक का नाम कहकर टाल देते हैं, काट देते हैं। और कितने आसान तरीके से कहा जाता है कि अगर दो बातें एक साथ मिल जाती हैं, दो घटनाएं किसी वजह से अगर मिल जाती हैं, तो उसे हम कितने आसानी से नाम देते हैं इत्तेफाक का, है ना। तो चलिए, क्या ये भी इत्तेफाक है कि खूबसूरत मौसम के साथ आज के इस कार्यक्रम को जोड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ सुबह के कार्यक्रम के साथ मिलती हैं बहुत सी अलग अलग चीज़ों को लेकर बातें की जाती हैं, जानी जाती हैं। जी हाँ, जैसे कि इतिहास के पन्नों को उलट कर हम जानते हैं बहुत सी चीज़ें, है ना। तो चलिए, कई सारी घटनाएं इत्तेफाक होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम सुहानी सुबह है आप सभी के साथ, और कार्यक्रम यूँ ही आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।

7:33 संग है आप शेर मिश्रा के सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह, जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी वक्त इसी जगह से। तो चलिए फिर एक बार आज के दिन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। और वैसे तो इतिहास के घटनाओं को लेकर मैं बात कर रही थी, और आज के दिन अनगिनत घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनके बारे में आप सभी के साथ मैं साझा करूंगी। और इसके साथ एक वीर सैनिक को आज के दिन याद करने का मौका भी हमें मिल रहा है। इसके अलावा आज के खास दिन को लेकर अगर मैं बात करूं तो दो अलग अलग कारण हैं जिस वजह से आज के दिन को मनाया जाता है। और सबसे पहला जो कारण है, जी हाँ, उसे मनाया जाता है आज ही के दिन, और नाम दिया गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो चलिए इस दिन को लेकर कर लेते हैं थोड़ी सी बात। हर साल यानी कि आज ही के दिन, जी हाँ, 26 जून को मादक पदार्थ के विरुद्ध और मादक पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये नाम दिया गया है आज के दिन को मनाने के लिए। और ये दिन मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है, ज़रूरत क्या है इस दिन को मनाने की? इस दिन का मुख्य उद्देश्य नशे की लत के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और एक नशा मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण करना है। शुरुआत की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को पारित प्रस्ताव के बाद पहली बार आज ही के दिन यानी कि 26 जून 1989 को यह दिवस आधिकारिक तौर पर मनाया था। तो दो कारण मैंने बताए थे आपको कि दो अलग अलग कारणों से आज के दिन को मनाया जाता है। तो सबसे पहला जो कारण है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के तौर पर मनाया जाता है। और अगला कारण क्या है और जिस वजह से मनाया जा रहा है उसके पीछे की कहानी यानी कि इतिहास और वजह उद्देश्य आखिर क्या है इस दिन को मनाने का, बताऊँगी ये सारी बातें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बातें जो है वो मनोरंजन को थोड़ा सा फीका कर देती है ना। और सुबह का समय है, जी हाँ, सुंदर सुबह को ख़राब करने का ना ही मेरा कोई मूड है ना ही मैं चाहती हूँ कि आपका मूड भी बिल्कुल ख़राब हो। तो चलिए मूड ख़राब ना करते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सभी सुनने वालों के लिए।

7:42 और सुहानी सुबह कार्यक्रम में चलिए मैं बता रही थी कि एक वीर सैनिक को आज के दिन याद करने का हमें मौका मिल रहा है। तो चलिए, वीर सैनिक आखिर कौन है, क्या है उनका नाम जिन्हें आज के दिन हम याद करते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का जन्म हुआ था आज के दिन और साल 1918। तो इस वीर सैनिक के बारे में चलिए आपको कुछ बताऊं। मेजर रामा राघोबा राणे भारतीय सेना के एक महान सैन्य अधिकारी थे जिन्हें 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस के लिए देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वे जीवित रहते हुए

आज ही के दिन और साल था 1918। सेना में भर्ती इस वीर सैनिक ने ली थी। साल था 1940 और महीना और दिन की अगर मैं बात करूँ 10 जुलाई 1940 को ब्रिटिश भारतीय सेना में इन्होंने भर्ती ली थी। अब सैन्य करियर की अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस कार्य को शुरू किया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में वे ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए और बाद में भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स में उनकी भागीदारी रही। राजौरी की लड़ाई में भी इनका नाम शामिल है। 1947-48 के कश्मीर युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कबायलियों और सैनिकों ने नौशेरा राजौरी मार्ग को नष्ट कर दिया था और भारी गोलाबारी कर रहे थे। मेजर राणे ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार 72 घंटे तक बिना सोए खाए दुश्मन के बिछाए हुए माइंस को साफ किया। अब इसके बाद भी क्या अदम्य साहस की बात ना करो ऐसा हो सकता है? तो चलिए इस वीर सैनिक के अदम्य साहस की गाथा आपको बताऊं। घायल होने के बावजूद उन्होंने भारतीय टैंकों और सैनिकों के आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ किया, जिससे भारतीय सेना ने झांगर और राजौरी पर फिर से कब्जा कर लिया। और उसके बाद इस वीर सैनिक से सम्मान और पुरस्कार किस तरीके से जुड़े रहे, कौन कौन से पुरस्कार इनके नाम हुए, इसके बारे में बताऊं आपको। इस असीम बहादुरी के लिए उन्हें 1948 में देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 5 मेंशन इन डिस्पैच, जो कि वीरता का विशेष उल्लेख है, और सेना प्रमुख द्वारा प्रशस्ति पत्र भी उन्हें मिला। सेवानिवृत्ति और आखिरकार वो दिन जिस दिन उन्हें अपनी धरती को अलविदा कहना पड़ा, उस दिन के बारे में बताऊं आपको। वे 21 वर्ष की सेवा के बाद 1968 में मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए और 1994 को उनका निधन हो गया। तो ये तो थी वीर गाथा हमारे वीर सैनिक की, जिनका नाम काफी गर्व से लिया जाता है। जी हाँ, मेजर राघोबा की बात कर रही थी, एक ऐसे वीर सैनिक जिनकी बहादुरी के कारण ही हमारा देश आज इतना खुशहाल है। और सिर्फ राघोबा जैसे वीर सैनिक नहीं, बल्कि अनगिनत वीर सैनिक हैं जो आज भी अपनी बहादुरी से अपने देश की, अपने देश के लोगों की रक्षा करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही वीर सैनिकों के लिए एक नमन तो करना बनता है ना? तो चलिए, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सुहानी सुबह, और सुहानी सुबह वाकई में बहुत ज़्यादा सुहानी हो जाती है जब आप जैसे सुनने वालों का साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ मिल जाता है। तो फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए। और जैसा कि मैं बता रही थी कि आज का दिन मनाया जाता है एक और कारण से। पहला कारण तो आप सभी के साथ साझा किया, इसके अलावा एक और कारण भी है जिस वजह से आज के दिन को मनाया जाता है। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अर्थात इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। जी हाँ, ये नाम दिया गया आज के दिन को मनाने के लिए। और हर साल 26 जून को ये दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यातना की क्रूर प्रथा को पूरी तरह से खत्म करना और पीड़ितों के समर्थन में एकजुटता व्यक्त करना है। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से आज के दिन को मनाया जाता है। इसके अलावा आज के दिन के इतिहास को लेकर भी मैं कर रही थी थोड़ी सी बात, और कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगी, ये सारी बातें साझा करूंगी। तो सबसे पहले 1498 की अगर बात करें तो मज़ेदार सा किस्सा इस साल के साथ जुड़ा हुआ है, चलिए इसके बारे में तो बताऊँगी आपको। लेकिन उससे पहले 1714 की अगर बात करें तो स्पेन और नीदरलैंड ने व्यापार एवं शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दिन था आज ही का। इसके

हमारे जर्नी में जर्मनी के कार्ल बेंज ने 1894 में गैस से चलने वाले ऑटो का अमेरिकी पेटेंट हासिल किया था। इसके अलावा 1919 में न्यूयॉर्क डेली न्यूज का प्रकाशन आज के दिन हुआ था। तो चलिए, मैं बात कर रही थी एक मज़ेदार से किस्से को लेकर। अच्छा, एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम सुबह शाम, जी हाँ, सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, और लगातार कई सालों से हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि दिन रात जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे की कहानी क्या रही होगी, या फिर किसने इस चीज़ को तैयार किया होगा? शायद नहीं, है ना। तो मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी ज़रूरत हमें सुबह सुबह नींद से उठकर ही सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी कि टूथब्रश। ही हाँ, जिसे हम रोज़ाना अपने मुंह को साफ करते हैं। तो ये एक आम चीज़ है ना, हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और हर रोज़ हर इंसान इस चीज़ का इस्तेमाल कम से कम दो बार तो करता ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो बिल्कुल किया कीजिए, जी हाँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि आपके दांतों को खूबसूरत मजबूत रखते हैं। तो चलिए, मैं बात कर रही थी टूथब्रश, जिसका इस्तेमाल हम हर रोज़ रोज़ाना दिन में दो बार तीन बार तो कर ही लेते हैं। और ये जो चीज़ है टूथब्रश, आखिर इसे तैयार किसने किया था नहीं पता ना, तो चलिए आपको बताऊं। साल था 1498, चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया। जी हाँ, चीन में तैयार किया गया था पहला टूथब्रश। आधुनिक टूथब्रश के पहले मॉडल को चीन के राजा ने पेटेंट करवाया था। तो ये तो है छोटी सी अच्छी सी कहानी जिसके बारे में शायद हमें पता था तो शायद कई सारे लोगों को नहीं पता था। अब एक अच्छा सा प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कार्यक्रम चल रहा है सुहानी सुबह, जिसका साथ रहता है पूरे 8 बजे तक।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्री 420 से सुनिए मनाले की आवाज में कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि आज के इस कार्यक्रम को करना होगा यह पर समाप्त। मिल रही हूँ बहुत जल्द इसी जगह इसी चैनल पर, समय रहेगा 11:10, लेकर आऊंगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न

0: 200 रुपए शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपए महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध

0: accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be a major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है। मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बैन अलावामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इकतसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उम्दा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा अक्वामे मुत्तहदा सेक्रेटरी जनरल की इक्तसादी उमूर की स्पेशल एडवोकेट से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे पर मबनी इनकलाब किस तरह इक्तसादी खिदमात तक ज्यादा रसाई को मुमकिन और उन्हें किफायती बना रहा है, जिससे रहन सहन में आसानी में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग बाख्तियार हो रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में शराकतदार मुल्कों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने की खातिर मुसलसल पुरअज़्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 27 से 29 तारीख तक सेशेल्स के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो वहां सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत दिफाई अफवाज के एक दस्ते और भारतीय बहरिया के 2 जहाजों के साथ तकरीबात में शामिल होगा। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की रोकथाम से मुतालिक तालमेल मरकज की आला सतह की 10वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। मनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो ने इस मीटिंग का
2: गाने कथाए गोल्डन समय आपनी सुनछेन 100.1 FM Gold মন কাড়া কথা আর মন মাতানো গান শুনছেন মনের মেলোডি 100.1 FM গোল্ডে মনের মেলোডি।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र

0: बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड की महारानी

0: रानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing ease of living and empowering people at scale. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to meet Queen Maxima of the Netherlands, who is also the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health and a

0: की कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 235 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति, अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स की महारानी के साथ मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधी उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने भारत के जनधन कार्यक्रम के लाभार्थियों से भी बातचीत की, जो एक सरकारी पहल है और जिसके तहत परिवारों को किफायती दरों पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्ण कांत।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन संबंधों पर आधारित दूरगामी साझेदारी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी प्रभावी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हुर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू हो रहा है। आज 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचा दिया। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही 25 व्यापारियों

0: के दूसरे दल को भी व्यापार पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के लिए नाभी ढांग के पास खच्चरों और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड महामारी के कारण 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 6 वर्ष बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला में कल आए भूकंप के 2 शक्तिशाली झटकों से मृतकों की संख्या अब 235 हो गई है। 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: भूकंप के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए कई देश आगे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए अमीशा।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को निकालने के प्रयास रोक दिए हैं। ओमान तट पर कल एक जहाज पर हुए हमले के बाद ये निर्णय लिया गया। इसके पहले ईरान की अनुमति के बिना जहाजों को नए मार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई थी। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: सबसे पहले बात फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। गोंजालो प्लाटा के शानदार खेल की बदौलत इक्वाडोर ने वापसी करते हुए ये मैच जीत लिया। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट के 6 अंक हो गए हैं। एक अन्य मैच में जापान और स्वीडन का मैच ड्रॉ रहा, दोनों ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही जापान और स्वीडन नॉकआउट में जगह बनाने में सफल रहे। उधर नीदरलैंड ने ट्यूनिशिया को हराकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया और पहली बार नॉकआउट में जगह बनाई। अब बात निशानेबाजी की। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत प्रतियोगिता में कुल 25 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर है। बात महिला T20 विश्व कप की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। कल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और उधर T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। दूसरा और अंतिम मैच रविवार को खेला जाएगा।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा भारत ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Prime Minister Modi to embark on a 3-day visit to Seychelles tomorrow as guest of honour for National Day Golden Jubilee celebrations. IMF hails India's economy as major driver of global economic growth despite

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों के एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने

0: लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़े कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और संगठनों की सराहना की। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हुर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from tomorrow to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing ease of living and empowering people

0: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात।

प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

11:17 है, स्टूडियो की घड़ी का समय 100.1 एफएम गोल पर। दोबारा शर्मिशा आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती है। इस बार लेकर आई है कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी जगह इसी चैनल पर। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 एफएम गोल्ड के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी ये प्रसारण सुन पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत हो चुकी है एक ऐसे कार्यक्रम की जिसमें बातें होती हैं ढेर सारी, और साथ ही साथ पुराने फिल्मी गीतों को लेकर भी हम चर्चा करते हैं इसी कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत की फिल्म सच्चा झूठा से एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसमें आवाज़ थी आशा भोंसले की, गुलशन बावरा के बोल थे और संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। ऐसे ही सदाबहार गीत सजते रहेंगे इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में बातें होंगी किसी खास को लेकर। जी हाँ, एक ऐसी जोड़ी को लेकर बात करूंगी जिसका नाम बॉलीवुड की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जी हाँ, दो भाइयों की कहानी, दो भाइयों की जोड़ी जिन्होंने बॉलीवुड के संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, और पहचान बनी उनकी संगीत से जुड़ी। जी हाँ, संगीत की दुनिया में इनका नाम जुड़ा है और दोनों भाइयों ने मिलकर, जी हाँ बता दूँ, दोनों भाइयों की कहानी, दोनों भाइयों की जोड़ी ने बॉलीवुड की दुनिया में संगीत तैयार करके अपना एक अलग मुकाम तैयार किया। तो चलिए बात करेंगे उस संगीतकार जोड़ी, भाइयों की जोड़ी को लेकर। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत जिसमें आवाज़ है शैलेंद्र सिंह और कंचन की।

ऐसे ही अनगिनत गाने हैं जिसमें संगीत से सजाया, जी हाँ संगीत से भर दिया आज के इस संगीतकार जोड़ी ने, जिसमें दो भाइयों का संगीत से जुड़ा योगदान रहा। बात कर रही हूँ संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को लेकर। कल्याण जी आनंद जी हिंदी सिनेमा की सबसे महान और लोकप्रिय संगीतकार जोड़ियों में से एक थी और इस जोड़ी ने लगभग 40 साल से अधिक के करियर में लगभग 250 फिल्मों में अपना शानदार संगीत दिया।

0: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

11:34 संग हैं आप शर्मिशा के सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 100.1 FM गोल्ड के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए बात कर रहे थे संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को लेकर। बॉलीवुड में कल्याण जी आनंद जी और जी हाँ ये जो जोड़ी है इस जोड़ी का योगदान संगीत के स्वर्ण युग की आधारशिला है। 4 दशकों के करियर में उन्होंने लगभग अनगिनत फिल्मों के लिए सदाबहार संगीत तैयार किया। बहुमुखी प्रतिभा हो या फिर स्टेज शो की शुरुआत और नए योगदान को मंच देने के लिए ये जोड़ी हमेशा याद की जाएगी।

11:40 होने को हैं और इस वक्त लो आगे उनकी याद कार्यक्रम में बातें हो रही है संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को लेकर। और इस जोड़ी के साथ अगर संगीत की विविधता को लेकर बात की जाए तो इस जोड़ी ने हर शैली में महारत हासिल की है, चाहे छलिया और हिमालय की गोद में के लोक गीत हों या फिर जब जब फूल खिले के रोमानी धुने, उनका संगीत हर वर्ग को भाता आया है। और अगर दशक की बात करें तो 1970 से लेकर 1980 के दशक में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे कि डोंग सफर, मुकद्दर का सिकंदर और कुर्बानी को अपने संगीत से अमर बना दिया।

जोड़ी के साथ शुरू हुई थी। इसके अलावा हमारे आज की इसी संगीतकार जोड़ी को एक नाम दिया गया था और वो ये नाम था कि उन्हें स्टार मेकर के तौर पर भी बुलाया जाता था। तो मैं बात कर रही थी स्टेज शो को लेकर। बॉलीवुड सितारों को विदेशों में लाइव कॉन्सर्ट्स के माध्यम से ले जाने और स्टेज शो का कल्चर शुरू करने का श्रेय भी इसी संगीतकार जोड़ी को ही जाता है। इसके अलावा मैं बात कर रही थी स्टार मेकर नाम देने के बारे में। उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे नए कलाकारों को अपने संगीत कार्यक्रमों में शामिल करके उन्हें स्टार बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म

आशा भोंसले मोहम्मद रफी की आवाज में सुनिए कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत। कार्यक्रम चल रहा था लो आ गई उनकी याद, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे संगीतकार जुड़ी कल्याण जी आनंद जी को लेकर, उनके संगीत को लेकर। तो चलिए आज करते हैं समाप्त इस कार्यक्रम को। वैसे तो संगीत की दुनिया में एक बार घुस जाए तो उससे निकलने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या ही करें, समय जो है वो हमारे हाथ में तो है नहीं, है ना। लेकिन एक प्यारे से गीत के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगी। आशा भोंसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म बैराग फिल्म से सुनिएगा इस गीत को, जिसमें बोल है आनंद बख्शी के और संगीत फिर एक बार कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशक दीजिए इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स के महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित

0: करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Rama Shankar Mishra, Subhash Srivastava and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinnu, along with other unidentified accused. The SIT headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant submitted its preliminary report to the government on Tuesday, making strict recommendations in the matter. Following this, the FIR was registered yesterday. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence AI technologies at the second PAX Silica Summit in Washington yesterday. US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg said the joint statement on AI opportunity, under which participating countries aligned behind a pro-growth, pro-innovation regulatory approach.

संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
4: मन की बात।

0: stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया अब समाचार विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
5: For our business,
6: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम

0: There's a big deal underway.
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार हैं।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला एक एक गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने

0: अंतिम 32वें जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइन आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायु

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस

के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी औषधियों पर प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बताया कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ 100.1 एफएम गोल्ड पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स लेकर। पर उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि परियोजना प्रस्तुति में आज क्या जानने वाले हैं हम।
1: 100.1 एफएम गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की। परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति।
0: दोस्तों, आज परियोजना प्रस्तुति में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर। जी हाँ, नाम सुनते ही समझ में आता है कि बात सूरज से मिलने वाले बिजली की हो रही है। ये योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी। इसका सीधा सा मकसद है आम लोगों के घरों के छतों पर सोलर पैनल लगवाकर उन्हें हर महीने लगभग 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। अब सोचिए, अगर आपके घर की छत ही बिजली बनाना शुरू कर दे तो हर महीने आने वाला बिजली बिल कितना हल्का हो सकता है। यही इस योजना का असली विचार है। सरकार चाहती है कि देश के करीब 1 करोड़ घर अपने खुद की सौर ऊर्जा पैदा करें। इससे दो फायदे होते हैं, एक परिवार का खर्च कम होता है, दूसरा देश को साफ और हरित ऊर्जा मिलती है। इस योजना के तहत सरकार सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी देती है, यानी पूरा खर्च आपको अकेले नहीं उठाना पड़ता। सिस्टम लगने के बाद जो बिजली बनेगी वो पहले आपके घर में इस्तेमाल होगी। अगर जरूरत से ज्यादा बिजली बने तो उसे ग्रिड में भेजा जा सकता है और उसका फायदा भी मिल सकता है। कुल मिलाकर ये योजना सिर्फ मुफ्त बिजली देने की बात नहीं करती, बल्कि घर घर को ऊर्जा से के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है। सूरज की रोशनी जो हर दिन मुफ्त मिलती है, अब उसी से घर रोशन करके करने का मौका दिया जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो छत पर सोलर जेब में बचत और पर्यावरण के लिए एक मजबूत कदम, यही है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की का टारगेट।
1: 100.1 एफएम गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की। परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति।
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स।
1: चाय और क्लासिक्स
2: 100.1 एफएम गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स।
1: चाय और क्लासिक्स
2: 100.1 एफएम गोल्ड पर।
1: एफएम गोल्ड पर।
0: नमस्कार, जायन क्लासिक्स के एक नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए ढेर सारी बातें और साथ ही साथ खूबसूरत गाने लेकर। नशा सिर्फ 4 अक्षरों का शब्द नहीं है, लेकिन इस एक शब्द के 2 चेहरे भी है। एक चेहरा जो किसी इंसान की आंखों से सपने छीन लेता है, उसके घर की हंसी चुरा लेता है, रिश्तों की गर्माहट को ठंडा कर देता है, और दूसरा चेहरा जो किसी की आंखों में चमक भर देता है, कदमों में हौसला भर देता है और दिल में ये भरोसा

जगा देता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। आज है 26 जून। दुनिया इस दिन को विश्व मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोध दिवस के बारे में रूप में जानती है। लेकिन आज की इस महफिल में हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि नशा बुरा है, हम ये भी खोजेंगे कि अगर किसी नशे को अपनी जिंदगी में जगह देनी ही हो तो वो कौन सा नशा हो। क्या वो नशा हो जो आपको अपनों से दूर कर दे, या वो जो आपको अपने सपनों के और करीब ले आए। तो चलिए आज एक कप चाय के साथ बड़ी खूबसूरती से बातें करते हैं इस बारे में कि आप कौन सा नशा प्रेफर करेंगे, जाना अपनी जिंदगी में कौन से नशे को जगह देंगे। एक ऐसा नशा जो आपको अपनों से दूर कर दे, या वो जो आपको अपने सपनों के और करीब ले आए। सोचिए इस बारे में और फिलहाल बातें होंगी। फिलहाल सुन लेते हैं मुकेश की आवाज में हमारा पहला गीत।

0: आज का विषय बड़ा ही सोचने समझने का विषय है कि क्या कौन सा नशा करना चाहते हैं आप, और क्या वो नशा जो आपको अपनों से दूर कर दे, या वो जो आपको अपने सपनों के और करीब ले जाए, यानी कि आप जो टारगेट करके रखे हैं, जो फोकस करके रखे हैं कि भाई मुझे ये काम करना है तो करना है, ये मेरा सपना है, इस यहाँ तक मुझे पहुँचना है, यानी सक्सेसफुल बनाए, ऐसा एक नशा। फिलहाल चलिए, हमारे जो पहले कॉलर है बड़ी सोच समझ कर वो जवाब लेकर आ चुके, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए देखते हैं कौन है। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: पापिया जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है जायन क्लासिक्स में आपका भी।
1: हमें निशा को धराम तो जवाती तो लगे जाए बच्ची
0: जी। निशा करता कैसे है, घर परिवार में सब ठीक है, बच्ची ठीक है?
1: हाँ एकदम सब ठीक आते, बच्चा तो ठीक आते, किंतु हमारे परिवार एक तो खानी शरीर प्रॉब्लम हो चें। और वही बात डॉक्टर देखा था जावे, हाई तो पायर ऑपरेशन करता है, फिर हमें एक दाबार हो गया।
0: अच्छा, किसको, किसकी तबीयत खराब है? किसकी तबीयत खराब है, किसके पैर में प्रॉब्लम्स है?
1: मेरा परिवार।
0: परिवार में किसके?
1: मेरा वाइफ का।
0: अच्छा, ओके ओके।
1: अच्छा, अभी जे टॉपिक टेकेचन আমার নেশা হচ্ছে এখন যেটা চেপেছে যে আমার একতলা ঘর আছে। তো এবং সামনে অনেকটাই জায়গা আছে। তো আমার যত আত্মীয় স্বজন আছে সবারই মোটামুটি ভালো ঘর তোর আছে, যার ফলে আমিও তাদের মোটা নেশা জেগেছে, আমি আরো ভালো করতে চাই।
0: আচ্ছা,
1: অর্থাৎ দুতলার উপরে বেশ মনের মতন একটুখানি করতে চাই, এবং সামনে যে জায়গাটা আছে একটা ছোট বাগান করে, আর যাতায়াতের রাস্তাটা বেশ আরো সুন্দর ভাবে করে নিয়ে, এবং পুরো জায়গাটাকে ঘিরে দিয়ে যদি একটা বেশ সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে আসি, তো তাহলে মনে হয় যে আমি তাদের সঙ্গে একটুখানি মিলেমিশে থাকতে পারবো। হয়তো এখনকার যুগে হয়ে গেছে না যে ঠিক একটু গা গাই না হলে ঠিক সম্মান পাওয়া যায় না, যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়ে আছে। তো সেটাই আমার এখন নেশা জেগেছে, আমি এই জায়গায় নিয়ে আসবো, আমার বাড়ি ঘর দর একতলা ঘর দুতলা করতে চাই, সেটাই আমার নেশা।
0: ওকে ওকে, ঠিক হ্যাঁ, ভগবান করে কি আপ কা যো ইয়ে নেশা হ্যায় ইয়ে বিলকুল ফুলফিল হো জায়ে, পুরি হো।
1: অটোমেটিক আমি শুরু করে দিয়েছি, প্রস্তুতি পর্ব শুরু করে দিয়েছি।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जल्द से जल्द आप, आपका जो टारगेट है, आप जो, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए।
1: टारगेट आज 2 वर्ष के मध्ये शेष करो।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, एकदम टारगेट रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि एटलीस्ट हमें सेटिस्फेक्शन रहे कि हम जो काम शुरू कर रहे थे उसके लिए ट्राई किया हमने, है ना? तो चलिए, आपका नशा है अपने सपनों के और करीब जाना, बेसिकली, है ना? चलिए, थैंक यू। तो कोई गाना सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो बताएं।
1: तेरी मेहरबानिया छायाछवि থেকে টাইটেল সং, তেরী মেহরবানিয়া শব্বির কুমারের কণ্ঠে। আমি আমার যাত্রা দলের বর্দা বলা যায় বনমালী পণ্ডিত, ওনাকে আমি এই গানটা ডেডিকেট করছি, করলাম।
0: ওকে, চলিয়ে ঠিক হ্যায় আপকে লিয়ে,
1: ভালো থাকবেন দিদি, আবার কথা হবে,
0: বিলকুল, ওয়াপস মুলাকাত হোগি, বাই। तो चलिए, इनका रिक्वेस्ट के बगाना हम सुनते रहते हैं और इंतजार करते हैं आपके आंसर्स का।

0: कितनी ही बड़ी परेशानियां हो, एक दोस्त कह जाता है चल पहले चाय पीते हैं, और यकीन मानिए उस एक कप चाय में कोई जादू नहीं होता। जादू होता है साथ बैठने में, जादू होता है सुनने में, जादू होता है ये महसूस कराने में कि तुम अकेले नहीं हो। शायद इसी वजह से हमारे यहाँ चाय सिर्फ एक पेय नहीं, एक रिश्ता है, एक बहाना है, एक उम्मीद है। और आज की महफिल भी उसी उम्मीद के नाम है, क्योंकि उम्मीद हर गलत रास्ते की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। फिलहाल हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, चलिए देख लेते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार पापिया जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाइना क्लासिक्स में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चाइना क्लासिक्स में।
1: असाधारण सुंदर,
0: थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया। একটা নিশার কথা, আমার লাইব্রেরির বই পড়তে খুব ভালো লাগে।
0: আচ্ছা,
1: মানে গল্পের বই। আমাদের যে লাইব্রেরি আছে সেখানে অনেক স্টক আছে, এবং সব পুরনো দিনে, প্রায় 100 বছর হয়ে গেছে
0: লাইব্রেরি।
1: এবং ওখানে আগে মাসিক বসুমতি বেরোত, পুরনো পত্রিকার রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, সমস্ত গল্পগুলো, ওর মধ্যে ছোট গল্প যেগুলো আছে, খুব অসাধারণ। আমি পড়েছি এবং এখনো পড়ছি।
0: জি,
1: এবং আমার ভালো লাগে গল্পের বই পড়তে, ছোট গল্পগুলো।
0: বিলকুল হোনা চাহিয়ে, বিলকুল হোনা চাহিয়ে, বিলকুল।
1: আর আজকে গানের অনুরোধ আমি করছি, ওই দোস্তি ছবির যে গানটা আছে লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে, গুড়িয়া।
0: জি, ঠিক
1: আছে,
0: গুড়িয়া কব তক হাসো, কব তক না হাসোগি।
1: দিদি ভালো থাকবেন, আমার কথা হবে।
0: বিলকুল বিলকুল, বাপস মিলেঙ্গে। তো চলিয়ে सुन लेते हैं रिक्वेस्ट के बाद गाना। हमारा अगला रिक्वेस्ट लता मंगेशकर की आवाज में, गुड़िया कब तक ना हंसोगी।

0: प्यारी सी गाने के बाद चलिए देख लेते हैं हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर कौन इंतजार कर रहे हैं। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून,
1: मैं मुनीरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण सांकेल हावड़ा से।
0: जी मुनीरुद्दीन दा, कैसे हैं? घर परिवार में सब ठीक है? और मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को।
1: हाँ, सबसे पहले आपको और सभी श्रोताओं को आज मुहर्रम का शुभकामना जानना चाहता हूँ।
0: थैंक यू सो मच।
1: और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा अच्छा गाना बजाने के लिए, और हमारे बुरा या भला नशा बलने के मौका देने के लिए।
0: जी जी जी, बताइए।
1: बुरा सबसे बुरा ठीक नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र बुरा हो जाता है। जो मोबाइल है वो हमारा रिलेटिव को दूर कर देते हैं। तो पहले से मैं इनवाइट करते शादी के समय या कुछ न्यूज देने के समय उसका घर जाता है
0: जी।
1: लेकिन आज वो मोबाइल से काम हो जाता है, इसके वो संपर्क को थोड़ा दूर हो जाता है मेरा हिसाब से।
0: ओके, अच्छा।
1: और मेरा अच्छा नशा है वो खत लिखना, जो हमारा हैंडराइटिंग है वो पाकर वो जो हमारा खत आता है वो हार्ड टच लिख होता है, क्योंकि हमारा हैंडराइटिंग कुछ का कुछ टच करता है। पहले से जो रेडियो से था चिट्ठी का जो पिटारा वो कुछ हमारे मन का बात, हमारा हैंडराइटिंग, मैं क्या हूँ ये हूँ वो समझता है। लेकिन आज मोबाइल हो गया, आज ईमेल हो गया
0: जी।
1: और टाइपिंग हो गया, वो मेरा जो अंदर जो कुछ क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी है, वो नहीं पहचानता। जो चिट्ठी खत से पहचानता है
0: जी।
1: जैसा मैं आज का कॉलर नहीं हूँ, मैं बहुत काफी दिन से फोन करता हूँ, मेरा खत रजविंदर जी पढ़ता है, बहुत प्रशंसा करता है मेरा। लेकिन मैं इसीलिए बोलना नहीं चाहता हूँ जो मेरा प्रशंसा करता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ ये आज पहले से जो दिन था वह खत का जो दिन था वह आज भी कुछ कुछ है, वो हमारा क्वालिटी वो जानता है, लेकिन मोबाइल से वो क्वालिटी नहीं जानेगा। तुरंत हो जाता है लेकिन क्वालिटी नहीं पहचानता है
0: जी।
1: मैं ये बोलना चाहता हूँ
0: जी। थैंक यू सो मच। तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और हमें सुनवाना चाहेंगे, बताइए।
1: आज सुनना चाहता हूँ धूल का फिल्म, धूल का फूल फिल्म से, तो हिंदू बने ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा।
0: ओके,
1: खास करके हमारे पापिया जी के लिए जो बहुत हमारे हार्ट टच आज है, और हमारा ओनली वन डॉटर आभा के लिए, और हमारे सबसे अच्छा दोस्त सोमनाथ घोष के लिए।
0: जी बिल्कुल, चलिए होपफुली हम, मैं और आभा तो सुनेंगे ही, सोमनाथ जी भी सुन ले बस वही।
1: ओके मैम, ओके
0: थैंक यू, फिर मिलते हैं, चलिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1

FM Gold पर, FM Gold पर। तो जायंट क्लासिक्स में इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बात हो रही है आज नशे के बारे में। जी हाँ, दो तरह के नशे, एक जो आपको अपनों से दूर कर दे और दूसरा जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी नशे में जीता है। किसी को शोहरत का नशा, किसी को दौलत का, किसी को जीत का, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने सपनों का नशा होता है। ऐसे लोग रातों को इसलिए नहीं जागते कि उन्हें नींद नहीं आती, वे इसलिए जागते हैं क्योंकि उनका सपना उन्हें सोने नहीं देता। और इतिहास गवाह है, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने किसी गलत आदत का नहीं, अपने जुनून का, अपने पैशन को साथ दिया। हिंदी सिनेमा में भी तो यही सिखाता है। हर दूसरी कहानी में एक ऐसा किरदार मिलता है जो गिरता है, टूटता है, ठुकराया जाता है, लेकिन हार बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है अगर एक दिन दुनिया ताली बजाएगी तो उससे पहले कई दिन उसे अकेले संघर्ष भी करना होगा।

0: चलिए हमारे अगले जो कॉलर है, हमारे दोस्त हैं, उनको ले लेते हैं फोन लाइन पर। हेलो
1: जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग पापिया मैम।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपके चाइन क्लासिक्स में।
1: जी मैम, मैं मोहम्मद नासिर, दरभंगा बिहार।
0: जी नासिर जी, कैसे हैं और मुहर्रम की ढेर सारी बधाई आपको, आपके परिवार
1: जी को। मैम आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां, और हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं मैम, तमाम लोगों को अपनी तरफ से मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाह रहा हूं मैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज का दिन कैसा बीत रहा है? अच्छा बीता
1: आज का दिन मैम? बहुत ही अच्छा बीता और बहुत ही बढ़िया बीता, और मैं इस लिहाज से भी कहूंगा कि आज का दिन जो है वो बुराई को हरा करके अच्छाई की तरफ जाने का जो संदेश है तमाम देशवासियों के लिए और तमाम दुनिया के लिए,

0: हिसाब से मैम बहुत अच्छा बीता और बहुत अच्छा चल रहा है
1: जी। तो इसीलिए तो आज जो बुराई है, नशे की बात हो रही है, तो फिर उस बारे में आपका क्या कहना है? आज जो विषय है कि जो नशे होते हैं, दो तरह के नशों के बारे में बात की, एक जो आपको अपनों से दूर कर दे और दूसरा जो आपको अपने सपनों के करीब कर दे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: मैं ये कहना चाहूंगा कि नशे दो किस्म के होते हैं, आपने साफ साफ कह दिया है, और इंसान के किरदार से छलकता है, इंसान के किरदार से ये झलकता है और देखने के लिए मिलता है कि वो उसका किरदार कैसा है, उसके एक्टिविटी कैसे हैं, उसके अखलाक और उनके बात कैसे हैं। जिस अखलाक क्रिया और एक्टिविटी के जरिए से इंसान एक अच्छाई के रास्ते की तरफ जाता है, और अगर हमारे स्वभाव, हमारे करेक्टर, हमारे स्वभाव अगर अच्छे नहीं हो, तो इससे ये जाहिर होता है मैं कि मैं बुरे रास्ते की तरफ जा रहा हूँ। तो इंसान का स्वभाव जो होता है वो इंसान का चेहरा होता है, इंसान का प्रतीक होता है, जो हम देख पाते हैं हमारे स्वभाव से या हम किसी और के स्वभाव से जान पाते हैं। और अच्छाई हमेशा अच्छे लोगों को पसंद करती है, और मैं उन तमाम लोगों को अपनी तरफ से कहना चाहूंगा जिनके अंदर थोड़ी सी भी ईगो हो या थोड़ी सी भी किसी बात का ये घमंड हो, तो प्लीज आप ईगो न करें, आप किसी भी चीज का घमंड न करें, क्योंकि ये दो चीज ऐसी है जो दुनिया में इंसान को बहुत नीचे के स्तर पर ले आता है, बहुत घटिया स्तर पर ले आता है। और अच्छाई एक ऐसी चीज है मैं जो इंसान दुनिया से अगर चला भी जाए तो फिर उनके जाने के बाद हमें तो लोग उन्हें याद करते रहते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: ठीक है नसीर जी, थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा अच्छी बातें आपने बताई, इतनी अच्छी बातें शेयर की आपने। तो फिलहाल कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: आप तो ऐसे न थो फिल्म से मैं मोहम्मद रफी की आवाज में तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल।
1: ओके चलिए सुन लेते हैं आपका गाना और फिर मिलते हैं, वापस मुलाकात होगी आपको आपके साथ।
0: ओके
1: थैंक यू सो मच। इस गाने के बाद होगा एक छोटा सा न्यूज ब्रेक, फिर वापस मिलेंगे 6:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की

0: और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। होम मिनिस्टर अमित शाह लेड अ डिटेल्ड रोड मैप टू अचीव द विजन ऑफ अ ड्रग फ्री इंडिया टुडे ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द होम मिनिस्टर लॉन्च्ड द विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल फ्रॉम 2026 टू 2029 अर्लियर एड्रेसिंग द 10th APEC

0: सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
2: तो जायंट क्लासिक्स में आज बात हो रही है भाई नशे के बारे में। दो तरह का नशा, जो एक जो आपको अपनों से दूर कर देता और दूसरा जो अपने सपनों के करीब ले जाता आपको। दोस्तों, सिनेमा का पर्दा सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, कई बार वो आईना भी बन जाती है। हम किसी किरदार को देखते हैं और अचानक लगता है, अरे ये तो मेरी ही कहानी है। कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी टूटे हुए रिश्ते, कभी अधूरे सपने, सब कुछ तो दिखता है उन कहानियों में। लेकिन एक चीज और दिखती है, उम्मीद। और उम्मीद से बड़ा कोई नशा नहीं। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, अगर आदत लगानी ही है तो सुबह जल्दी उठने की लगाओ, किताबें पढ़ने की लगाओ, माँ बाप के साथ बैठने की लगाओ, दोस्तों से खुलकर हंसने की लगाओ, संगीत सुनने की लगाओ और सपने देखने की लगाओ। क्योंकि ये आदतें जिंदगी कम नहीं करती, जिंदगी बढ़ा देती है। सोचिए तो, अगर दुनिया के हर चौराहे पर जहाँ कोई गलत रास्ता बुलाता है वहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान हो जहाँ कोई दोस्त बैठा मिल जाए तो शायद कई फैसले बदल जाते हैं। क्योंकि इंसान हमेशा नशे की तलाश में नहीं होता, वो अक्सर सुकून की तलाश में होता है। और सुकून किसी नशे में नहीं बल्कि किसी अपने के साथ बिताए गए 5 मिनट में मिल जाता है। यही वजह है कि हमारे फिल्मों में चाय वाले दृश्य हमेशा खास होते हैं। दो लोग, एक मेज, दो कुल्हड़ और ढेर सारे बातें। क्योंकि कहानी वही बदलती है जहां बातचीत शुरू होती है, और जहां बातचीत खत्म हो जाती है वहां अक्सर गलत फहमियां जन्म लेती है, अकेलापन बढ़ता है, और अकेलापन हर बुरी आदत का सबसे आसान दरवाजा होता है। इसलिए आज अगर आप किसी अपने से नाराज है तो बहस मत कीजिए, उसे एक कप चाय पर बुलाइए। हो सकता है जो बात महीनों में नहीं बन पाई वो 10 मिनट में बन जाए।

0: चाय एंड क्लासिक्स में हम आगे बढ़ रहे हैं और पल पल जाने का वक्त जो है वो पास आ रहा है। आप सुने चाय एंड क्लासिक्स और 6:21 स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है। हमारे अगले कॉलर भी हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाय एंड क्लासिक्स में। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी बताइए।
1: मैं देवजानी बोल रही हूँ।
0: जी देवजानी जी कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
1: अच्छा चलता है, शरीर थोड़ा ठीक नहीं है, जो भीगा वो है ना बारिश में
0: जी,
1: सर्दी लग गया, सर्दी लगा भाई।
0: तो ख्याल रखिए अपना, ठीक है, बिल्कुल आराम कीजिए अभी। हाँ, बस इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है,
1: बाहर में नहीं गई आज।
0: एकदम एकदम एकदम सही किया आपने, बताइए।
1: मल्लिक फटेक से बोल रही हूँ, हावड़ा मैदान मल्लिक फटेक से, देवजानी बर्मन।
0: जी जी जी।
1: और मेरा गाने को हमको जो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, हम बहुत दिन नहीं सुना है, बहुत अच्छा लग जाए वो गान, जिंद्रो हेमावाली का जो वारिस है। और एक तो गाना है हिम्मत का, जो मान जाइए ये भी हमको अच्छा लगा, ऐसा गुस्से का जो है
0: ओके,
1: अच्छा लग जाए वो सुनने में, जो आप ये सुना देंगे तो बहुत बढ़िया होगा।
0: एकदम चलिए सुनाएंगे हम आपको आपका गाना पसंद का। ओके
1: ओके ओके, आप सुस्त रहिए दीदी,
0: एकदम आप जल्दी से ठीक हो जाइए फिर बात करेंगे।
1: ओके ओके,
0: बात तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जल्दी से ठीक हो जाइए। ओके
1: ओके ओके
0: ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू दीदी, थैंक यू।
0: दोस्तों कभी आपने गौर किया है, बचपन में जब हम गिर जाते तो माँ दवा लगाने से पहले गोद में बिठा लेती, दर्द तब भी होता लेकिन कम महसूस होता था, क्योंकि दर्द की दवा सिर्फ मरहम नहीं थी, अपनापन भी था। शायद यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। मुश्किलें हर किसी के हिस्से में आती है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसकी जिंदगी हमेशा सीधी रेखा पर चले। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई अपने दर्द का हाथ पकड़ लेता है तो कोई दर्द को अपना हाथ पकड़ने देता है। आज जब पूरी दुनिया 26 जून के बहाने ये याद दिला रही है कि नशे से दूर रहना जरूरी है, तो शायद हमें ये भी याद करना चाहिए कि हर बुरी आदत की शुरुआत किसी खुशी से नहीं होती, अक्सर उसकी शुरुआत एक खालीपन से होता है, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई देख नहीं पाता। कई बार कोई लड़का बहुत हंसता हुआ दिखाई देता है लेकिन उसके भीतर कितनी आवाजें लड़ रही होती हैं, किसी को नहीं पता। कोई लड़की हर दिन मुस्कुराकर सबका हाल पूछती है लेकिन रात को अपने ही सवालों से हार जाती है। बाहर की मुस्कान और भीतर की खामोशी का हिसाब किसी के चेहरे से नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि बातचीत कितनी जरूरी है। किसी से पूछ लेना कि कैसे हो सिर्फ एक औपचारिक सवाल नहीं होता, कई बार ये किसी टूटते हुए इंसान के लिए उम्मीद का पहला दरवाजा भी बन जाता है। बहरहाल अभी समय हो चला है कि हम आगे बढ़े, बढ़ते रहे जिंदगी में। तो सबसे अच्छा क्या है पता है, कि अपने काम से प्यार कर लेना, अपने प्यार करना सीख लेना, अपने परिवार के साथ हंसना सीख लेना, जिनसे किताबों की खुशबू महसूस कर लेना, जिसने किसी पुराने गीत में अपना बचपन ढूंढ लिया हो, ऐसे लोगों के साथ मिलना, जिसने बारिश की पहली बूंद के साथ चाय के पहले चुस्की का आनंद लेना सीख लिया, उसे पता चल जाता है कि सुकून खरीदा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। यही तो चाय एंड क्लासिक्स की असली टू है, एक कप चाय, कुछ पुराने कस्से, कुछ नई उम्मीदें, और ये एहसास कि जिंदगी अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद अब भी बेहद खूबसूरत है। क्योंकि अगर किसी नशे को चुनना ही है तो ऐसा नशा चुनिए जो आपको आपकी आंखों की चमक बढ़ा दे, आपको आपकी माँ की मुस्कान लौटा दे, आपके पिता के माथे की चिंता कम कर दे, और आपके दोस्तों को आप पर गर्व करने का मौका दे, और जो हर सुबह आपको आईने के सामने खड़ा करके ये कहने की हिम्मत दे कि मैं अभी खत्म

नहीं हुआ, मेरे सपने अभी जिंदा हैं। तो ये थी चायन क्लासेस की आज की खास पेशकश। और अब जाने का वक्त ऑलमोस्ट हो चला है। देवजानी दी ने रिक्वेस्ट करके रखा है, देवजानी दी गुस्सा मत कीजिएगा, ज़रूर आपका गाना बजाएंगे। मान जाइए मान जाइए, फ्रॉम द फिल्म हिम्मत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है ये गाना। और चलिए गाना सुनते सुनते आपसे भी मैं फ़िलहाल चायन क्लासिक्स में लेती हूँ विदा। कल वापस मुलाकात हो जाएगी आपसे कुछ और बातों और गीतों के साथ। तब तक के लिए 100.1 एफएम गोल्ड है ये, और खरा सोना है भाई, तो बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी ही देर में वापस मुलाकात होगी 7:02 पर एफएम रेनबो पर, लेकर सेल्यूलॉइड सुपरहिट्स, जहां बातें होंगी ढेर सारी। किस पे? आज बातें होंगी सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों पे। इंतजार कीजिए और बने रहिए, यही मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: And there's already another one which is still going on, you know, between Russia and Ukraine. So, of course, these events do have an impact. There was an impact in the short term. All of us felt it, not only in India, but every other country, rather every other country, much more than India. And that is where the cautionary note comes into play, because that, effect will be felt for a little bit of more time, although there will be the absorption of the aftershocks in terms of the steps which are being taken, or in terms of the way the overall economic structure behaves and works. But largely at the end of the day, what comes to what it comes to is the fact that the fundamentals have to be resilient. And as far as Indian economy is concerned, when we look at all the parameters, be it various sectors, the manufacturing, the services, the agriculture, the way the stock market has behaved as well, the kind of steps which have been taken by the central bank also in terms of its monetary policy, the kind of economic policy steps which have been taken by the government, they all go on to indicate to the investors and to the to the larger world outside that yes, everything is hunky-dory here. There's nothing much to worry about. Of course, if it's a global crisis, everybody will feel the pinch. We will also feel a little bit of it.
1: Right. Weather-related uncertainties is also something which is figured in.
0: Yes. Weather do play a very important part, agriculture sector in India is still very monsoon dependent, just like many other countries across the world as well. So, of course, it is a very important sector in our economy. So, largely the way it was being predicted, it was being pointed out as far as monsoon is concerned, that was not a very, very rosy picture. But I think that situation has also started to change now. I think the last I read, I believe here in National Capital Region only, we should get the first monsoon showers in the first week of July, which is not too late than what the usual term is. And if that's the case here, then across the country as well, we might feel the pinch somewhere, in terms of some dry regions or some regions not receiving that much rainfall as is expected. But yes, weather do play an important part, and that might be something which Goldman Sachs or others would have considered. But largely, I would say it's the overall impact, the dent which was there, which all of us felt for almost 100 odd days. That is something which will pinch us a little bit more, not much.
2: So, Vishal ji, IMF ki jo communications department ke director hain, unhone bhi jo bataya hai ki Bharat ki economy ka jo projection hai, wo unhone fiscal year 2026-27 ke liye 6.5% par barkarar rakha hai. Aur jo unhone reasons bataye hain is mazbooti ke liye, ek to strong momentum jo pichle varsh se aaya hai, aur dusra reduction in US tariff rates. So आपको लगता है कि जो management बहुत strong रही है financial और monetary level पर भारतीय economy की, उसने हमें इस समय पर मजबूती से deal करने में help किया है? कैसे देखते हैं आप इस situation को?
0: देखिए, IMF की जो prediction है उसे थोड़ा सा interim prediction हम interim outlook कह सकते हैं, क्योंकि largely IMF का जो global outlook आएगा वो जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में आता है, और उसमें थोड़ा सा और detail उनका एक्सप्लेनेशन होगा कि वो जो भी उन्होंने कहा है वो उसको किस तरह से देखते हैं. लेकिन ये बातें सही हैं, जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि कारण सबके लिए वही है, क्योंकि चाहे उसको आउटलुक को आईएमएफ तैयार करे या गोल्डमैन सैक्स तैयार करे या हमारा खुद का सेंट्रल बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो तैयार करे, दो तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है. सबसे पहला तो मिडल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही थी उसका जो असर रहा है एनर्जी सेक्टर पर खास तौर पे. अब ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे ज़रूर आ गए हैं, लेकिन अगर हम प्री वॉर लेवल्स के लिहाज से देखें तो लगभग 8-10% अभी भी ऊपर ही हैं. तो एक तो उनको थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा, और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि परफॉर्मेंस असल में एक कंसिस्टेंसी जिसकी बात की आपने, आईएमएफ ने जो कंसिस्टेंसी की बात कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है इकोनॉमिक आउटलुक अब जब हम देखते हैं या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, और चाहे उसे सेक्टर दर सेक्टर देखें या फिर एक ओवरऑल
2: जो आंकड़े में दिखाई दे रहा है उन्होंने, जैसे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर में कहा है कि आउट परफॉर्म किया है हमने एक्सपेक्टेशंस से.
0: मैं तो थोड़ा सा और आपको पीछे ले जाऊंगा, और वो भी आंकड़े हम देख सकते हैं. अब कोविड के बाद से जिस तरह से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का जो

0: परफॉर्मेंस रहा है भारत का, और खासतौर पे अगर हम उसे कंपेयर करें इंटरनेशनल सिनेरियो से, तो वो एक कंसिस्टेंसी जरूर है। कभी 2.5% ऊपर, कभी 0.5% नीचे, वो बात अलग है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो मेंटेन हुई है, उस कंसिस्टेंसी के चलते जो हम बार बार कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत मजबूत हैं, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। कोई भी अर्थव्यवस्था तब मजबूत नहीं मानी जाती जब वो किसी एक क्वार्टर में 10% ग्रो करे और दूसरे क्वार्टर में 4% ग्रो करे। अगर कोई कंसिस्टेंसी है तो इसका मतलब कुछ कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई है, केवल एक या दो सेक्टर पर ये जो ग्रोथ है वो निर्भर नहीं है।
1: जी, और जैसा आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स को भी रिलीफ मिला है और वापस वो जो सप्लाई है उसको रिस्टोर करने के स्टेप्स,
0: ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि ये एक जब युद्ध चल रहा था तो उस दौरान ये एक बड़ा फैसला था भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि ये इंश्योर करना था कि जो सप्लाई है, खासतौर पर जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए सप्लाई है, उसमें कोई किसी तरह की रुकावट ना पेश आए। इसलिए जो कमर्शियल एलपीजी सप्लाई थी उस पर कुछ कटौती लगाई गई, कुछ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, और अब उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना ये इंडिकेट करता है कि एक तो गैस की आपूर्ति में, यानी कि जो एलपीजी गैस है उसकी आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, दूसरा जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है उसको फिर से दुरुस्त कर लिया गया है, और तीसरा इससे सीधे सीधे तौर पर जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है उनको सीधा फायदा पहुंचेगा, और वहां जो खपत होगी वो सीधे तौर पर इकोनॉमी को मजबूत करेगी।
1: बिल्कुल, और आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों की ओर। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज गिरावट आई। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में मंदी से निवेशक परेशान थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूलभूत ढांचे की बढ़ती लागत पर चिंताएं गहराने के बीच टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हुई भारी बिकवाली के बाद दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 5.8% लुढ़क गया। सत्र के दौरान एक समय कॉस्पी 8% से अधिक गिर गया था, जिसके चलते कोरिया एक्सचेंज ने सर्किट ब्रेकर लगाकर 20 मिनट के लिए कॉस्पी में शामिल शेयरों का कारोबार रोक दिया। ये इस सप्ताह कारोबार में दूसरी बार रोक लगाई गई है। उधर जापान का निकेई 225 4.1% से अधिक गिर गया। ताइवान का ताइएक्स 3.6% से अधिक के नुकसान में रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक लगभग 2.3% की गिरावट में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में करीब 1.8% की गिरावट आई, और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.5% गिरकर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के प्रमुख सूचकांक भी दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक गिरावट पर चल रहे थे। जर्मनी का डैक्स 1.1%, लंदन का फुटसी 100 लगभग 0.9% और फ्रांस का कैक 40 0.8% के नुकसान पर थे। आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी, कॉस्पी में जो हमने देखा है इस सप्ताह 16% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। आज सर्किट ब्रेकर लगा, इस सप्ताह पहले भी एक बार सर्किट ब्रेकर ट्यूसडे को लग चुका है, तो कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? क्या ये बहुत चिंताजनक है?
0: देखिए, थोड़ी सी तो चिंताजनक है, क्योंकि जो इतने बड़े प्लेयर हैं खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, उनके शेयर्स में इस तरह से भारी गिरावट आना, बिकवाली होना, वो एक चिंताजनक पहलू जरूर है। लेकिन इसके पीछे के कारण जो है उनको थोड़ा सा समझना जरूरी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर रोज कुछ नई डेवलपमेंट होती है, और कई बार वो डेवलपमेंट पॉजिटिव होती है, कई बार वो डेवलपमेंट नेगेटिव भी मानी जाती है। इसके असर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो दिख रहा है, एक टर्म का इस्तेमाल हुआ था जो कि आजकल बहुत लिखा जा रहा है, जिसके बारे में मेमफ्लेशन जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा उससे संबंधित जरूर है। मेमोरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेमोरी का इस्तेमाल, मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल, उसके चलते जो शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का एआई सेक्टर में थोड़ा
1: जिसके
0: सा
1: चलते एप्पल की प्राइसेस,
0: बिल्कुल
1: प्रोडक्ट्स की प्राइसेस।
0: देखिए, ये इसमें एक थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन अगर समय की इजाजत हो तो मैं जरा एक मिनट में अपने श्रोताओं को जरूर समझाना चाहूंगा कि मोटे तौर पर जो हम मोबाइल फोन्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम मेमोरी चिप इस्तेमाल होती है, वो मेमोरी चिप और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जो जो सर्वर्स हैं या जो एआई का इस्तेमाल जहां होता है वहां पर जो मेमोरी चिप इस्तेमाल होती है उसको एचबीएम कहा जाता है, और उसको उसका स्पेस लगभग

0: बड़ी तस्वीर जो उभर के सामने आती है वो है कि भारत कैसे एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आए।
1: India's foreign exchange reserves rose by $963 million to over $672 billion during the week ended June 19th, according to the Reserve Bank of India data. The rise was mainly driven by a sharp increase in coal reserves, which increased by $4.1 billion to over $107 billion. In contrast, foreign currency assets, the largest component of the reserves, decreased by $3.07 billion to $541 billion during the week. Special drawing rights, SDRs, fell by 52.
2: और अब चले commodities की ओर गौरा।
1: हाँ जी बिल्कुल।
2: So, पहले क्रूड ऑयल पे नजर डाल लेते हैं।
1: एब्सोल्युटली। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे ऑन ईजिंग सप्लाई कंसर्न्स एज़ मोर स्ट्रैंडेड ऑयल टैंकर्स एक्सिटेड द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। Brent crude was trading over 3.1% down at $72.91 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading 2.8% down at $69.90 per barrel when reports last came in. Moving to the commodities market, in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.3% up at 1,43,940 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% up at 2,22,350 rupees per kilogram. A short while ago.
2: उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.4% बढ़कर 1,43,658 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 0.9% की बढ़त से 2,21,551 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सो क्या इंडिकेशन दे रही है हमें कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस जो इतने नीचे आ गए हैं प्री वॉर लेवल्स के नीचे, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है।
0: देखिए बिल्कुल, जो ऑयल प्राइसेस का नीचे आना तो बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। हालांकि जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अभी भी 8-10% की बढ़ोतरी जरूर बनी हुई है, लेकिन उतना आज की तारीख में मैनेजेबल कहा जा सकता है। जिस गति से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी थी और उसका जो असर हमें देखने को मिला था, उससे बहुत बड़ी राहत है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे थोड़ा आसान जरूर होता जाएगा।
2: और अगर हम प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो उसमें आप किस तरह का आगे चलकर यू नो मूवमेंट देख रहे हैं?
0: देखिए, आप पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी दोनों में काफ़ी गिरावट देखी गई है और ये संभावित भी था, क्योंकि जिस तरह से सोने, खासतौर पे सोने की अगर मैं बात करूं, प्रेशियस मेटल्स, अगर उनका बिहेवियर जिस तरह से रहता है कि अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन है तो उनकी कीमतों में हमें उछाल देखने को मिलता है। अब जब क्राइसिस थोड़ी सी ईज होने लगी, इसमें कोई नया पहलू नहीं था, लेकिन अब जो चाल रहेगी, जो मेरा मानना है, सोने और चांदी की जो चाल रहेगी वो बड़ी धीमी गति की चाल रहेगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा उछाल हमें देखने को शायद ना मिले और कोई बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को, इससे ज़्यादा गिरावट देखने की उम्मीद शायद नहीं होनी चाहिए। और ये धीमी गति की चाल जो इन दोनों प्रीशियस मेटल्स का जिस तरह का बिहेवियर रहा है उसी तरीके से,
2: पर घड़ी तो अपनी ही चाल से चल रही है, तो हमें अपनी चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आप आए और आपने इतने विस्तृत विषयों पर इतनी हमें गहन जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
1: एब्सोल्युटली, थैंक यू विशाल। एंड नाउ लिसनर्स, बिफोर वी क्लोज अ लुक एट द हेडलाइंस, गोल्डमन सैक्स रेजेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8% फॉर 2026। मेजर Asian stock market indices end in negative territory and global crude oil prices continue downward slide. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर

0: जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 एमसीसी C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता की ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय मनोज सिंह राणा। Home Minister Amit Shah laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organised by the Narcotics Control Bureau today, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre, NCOD, in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that drug menace threatens national security, social stability, economic interests and the future of the youth and the country. He urged spiritual leaders, the youth and the mothers to come together on a single platform to win this war.
3: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics.

0: बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता

0: के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री

0: साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 MCC C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। इस बीच वेनेजुएला में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचाव कर्मी मलबे में लोगों की जान बचाने के लिए खोज अभियान तेजी से चला रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहत कार्यों में सहयोग के बयान पर आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. Home Minister Amit Shah laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India today. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre, NCOD, in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that drug menace threatens national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and the mothers to come together on a single platform to win this war.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: India, along with 34 nations, signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence AI technologies at the second PAX Silica Summit in Washington. India joined the

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा

0: पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकार

0: के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10,00,000 रुपए और घायलों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है

0: जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death's toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President JD Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikant and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: गाने कथाएं गोल्डन समय, आपनी सुनछेन 100.1 FM गोल्ड, 100.1 FM गोल्ड, FM गोल्ड।
4: आपनार लिखा गल्पे साजानो अनुगल्पेर आसर, सुनछेन 100.1 FM गोल्डे अनुगल्पेर आसर, अनुगल्पेर आसर।
5: শ্রেয়া সরিয়ে আজ আপনাদের সঙ্গে সুদীপ্ত আর তাপস। এই জুন মাসের বিষয় ছেড়ে আসা স্টেশন, আর এই বিষয়ে এবারের যে গল্প তার নাম মনে পড়ে। পাঠিয়েছেন রমা সেন, বজবজ, কলকাতা 137 থেকে। এই বাবু, এবার পুজোয় বন্দে ভারতে যাবি? পাগল, টিকিট কাটো, ওয়েটিং, ওইচই, ফ্লাইটে টিকিট কেটে দিচ্ছি, কোথায় যাবে বলো? কোথায় যাব? কুলির মাথায় হুলডল, দুহাতে কাঁধে বোঝা, খাবারের ঝুড়ি, জলের পাত্র হাতে কুলির পিছনে বাবা ছুটছেন আমাদের দু ভাই বোনকে নিয়ে। ওপরের বাঙ্কে শোয়া নিয়ে ভাই বোনে ঝগড়া, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে আলো ঝলমলে স্টেশন, চায়ে গরম, ভোরের আলো ফুটছে, একটা একটা করে স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে, ভাই বোনে স্টেশনের নাম মুখস্থ।

0: स्क्रीन नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक

क्षेत्रों तक पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त

आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छिड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के

राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की टी

पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।